जब जरिया तब होए पसम तानो रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की एह बड़ाई काहे पहिया फिरताओ फूलिया फूलिया। जब दस मास उर्द मुख रहता सोदन कैसे फूलिया रहाओ। ज्यो मधमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया मरती बार लेहो लेहो करिए पूत रहन क्यों दिया। देहुरी लो बरी नार संग पई आग सजन सोहेला मरकट लाओ सब लोग कुटम पयो आग हंस अकेला। कहत कबीर सुन

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जमके पटाए लिखाया, भगत नार दीर दैना आई काश कूश तंदीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परे काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जै जानी, कर दूजा दो

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुखिया बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहाही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन मान

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी। काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ। लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई। तह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै। सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै। अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ। छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा। संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया। कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, जय माला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ। दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना। अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों भक्त जवाले। खाट मांग

कह कबीर मन मान्या, मन मान्या तो हर जान्या। राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ। जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही, नेरै नाही दूर निजात मैं रया भरपूर। जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहि समानिया। कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी दहो बताई हो। रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ। बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो वापन बेडी आवे हो। ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कहन न जाई हो। बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू थाप्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो। सोरठ करती जा अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाजै।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कहरव दास चुमारा, चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, होमर गंठे जाए पहुचा। हरवदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

साहिब मेरा नीतनमा सदा सदा दातार रहाओ। अंदन साहिब सेवी है अंत छाए सोए, सुन सुन मेरी कमनी पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा सद कुरबान जाओ रहाओ, सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए। ता की सेवा सो करे जा को नजर करे, तुद वाज प्यारे केव रहा

आखण तेरा नाओ जित लग तरना होर नहीं थाओ। जे को डूबै फिर होवै सार नानक साचा सर्वदा तार। तनासरी महला पहला चोर सलाहे चीतना पीजै जे बदी करे ता तसूना छीजै।

सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए, पवखन्ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त ननायक तोही, सहस पद बिमलो ननेक पद गंध बिन। सहस तव गंध विचलत मोही, समय जोत जोत है सोए, तिसके चानन समय चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ज्योतिष पावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मानो, अन दिनों मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे।

पूरे गुर की साची बाणी, सुख मने अंतर सह समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाहीं कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, तिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगा